केवेनष्टेयाता तवा छोटा सोवाने हकेवेनष्टेयाता न एङ्याता सोवाने आ याय आ याय हे मंग मंग कतरित अम नामे पोषे नोनवाया मंग मंग कतरित अम नामे पोषे नोनवाया शेक्या